याज्ञा करामः। सर्वबलधारिणो अनाति अनन्तो देवयेनि मोक्षं पन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव। මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්.

0: श्रीवेवा।
1: इसलिए स्वामिनी ओब सब विन्म सुशुद्ध सिलु सुशुद्धता वे उल्पत बोहन से में यही नोहन से आत्म नंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवाद करण में नियदि अपे से अदुने मे पांडु अपुदेसा अपे स्वामी वन जेसुस क्रिस्तुन महंस गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संदहाये।